सुभानअल्लाह कभी शबनम कभी शोला मैं मजनू तू है मेरी लैला दे दे दिल का प्यारा नजराना तू बड़ी माशाल्लाह कहे अब्दुल्ला तेरा जलवा सुभान